एक और गाने के बाद सताक्षी के साथ आप हैं और मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। कई खूबसूरत बातें, कई बेहतरीन गाने इस सफर में साथ साथ इस सुबह को और भी हसीन बना रहे हैं। वैसे सुबह उठते ही एक जो विश आती है ना माइंड में कि यार ये हो जाता तो अच्छा था, या रात को सोने से पहले तब भी एक विश होती है कि यार ये मिल जाता तो अच्छा था। वो विश कोई भी हो सकती है, मतलब किसी के लिए कार हो सकती है, किसी के लिए उसका ड्रीम हाउस हो सकता है, किसी के लिए ड्रीम जॉब हो सकती है, किसी के लिए लाइफ पार्टनर हो सकता है ना, किसी पर क्रश हो और बस ये जिंदगी में आ जाए तो क्या बात है, जिंदगी बन जाए ये। लेकिन एक विश हम सबके माइंड में होती जरूर है, जिसको हर रोज रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही हम याद करना चाहते हैं, और ये याद आती भी है हमें, और वही ना आपके जीने की वजह होती है, एटलीस्ट जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक। तो उस विश को कभी भी छोड़िए नहीं, उसके लिए पैशनेट रहिए, हमेशा उसे पाने की ख्वाहिश रखिए ताकि आप जिंदगी को बहुत करीब से जीते रहें। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि वो विश पूरी होने के बाद दूसरी जिंदगी में नहीं आती। भाई ख्वाहिशें हैं, एक पूरी होती है दूसरी आ जाती है। तो फिलहाल आपकी विश के नाम ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ। आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस।

बार सच्चाई हमारी निगाहों के, हमारी आंखों के सामने होती है, मतलब लोगों को लेके, चीजों को लेके हमें पता होता है कि यार ये चीज बहुत क्लियर है, लेकिन फिर भी हमारे दिल को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है, रियलिटी सामने होने के, हमारे दिमाग में होने के बावजूद। और खासकर मुझे लगता है ये रिश्तों में ज्यादा होता है, मतलब होता है ना यार एक वो वाला फेज जब डॉक्टर आपसे कह दे कि ये इंसान अब बचेगा नहीं, और फिर भी आपका दिल मानने को तैयार नहीं होता, होता है ना वाला फेज जब आप रिलेशनशिप में हो और आपकी आंखों के सामने हो कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है और ये चीट कर रहा है मुझे, बट स्टिल आप मानना नहीं चाहते, आपको लगता है कि यार सब कुछ तो ठीक है, बेकारी में हम शक कर रहे हैं ना, ये वाला जो फेज होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। और कितना भी टाइम जरूर ले लीजिए, लेकिन इस फेज को एक्सेप्ट बहुत जरूरी है करना, ताकि आपकी आने वाली लाइफ जो है वो इससे इफेक्ट ना करे। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ अभी बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, और रहिए रेडियो प्रस्वानी पर मेरे साथ।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

यार कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं इतनी प्रेशियस हूँ, इतनी प्यारी हूँ कि लोग मुझे पाना चाहते हैं। मतलब उनको लगता है कि सताक्षी मेरी जिंदगी में रहे तो कितना अच्छा है। आपको क्या लगता है, हूँ मैं प्यारी? जोक्स अपार्ट दोस्तों, अपनी मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन सच है ना कि कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें बांट सा लेते हैं। तो मेरे साथ भी रहो, मेरे साथ भी रहो, और हमें लगता है हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, हम कितने मतलब लोगों के दिल के करीब हैं। आपको एक बात बताऊं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने लोग आपके साथ होना चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि कितने लोग हैं जो आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि आप में क्वालिटीज हैं, लेकिन कौन है जो पूरी इज्जत से आपको, खासकर रिलेशनशिप में जो लोग जाना चाहते हैं या हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यार कौन है जो आपकी वैल्यू करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। सिर्फ प्यार के पीछे मत भागिए, सच्चाई को, रिस्पेक्ट को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आगे काम आती है। और मैं कहती हूँ ना हमेशा कि यार जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ प्यार अपने आप हो जाता है, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ अच्छा खासा प्यार भी खत्म हो जाता है। तो चलिए इसी बात पर एक और गाने को एंजॉय कीजिए मेरे साथ। सुनते रहिए आपका ब्रेकफास्ट शो, इट हैपेंस।

यार कुछ चीजों में, कुछ सेंटेंसेस में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन समझने वाले समझ नहीं पाते। अब देखिए ना यार, कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे हैं ना जो जब फ्री टाइम होता है तो हमसे बात करते हैं, और हमें लगता है कि यार हम भी कहते हैं जब उसके पास वक्त होगा वो हमसे बात कर लेगा, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे बात करने के लिए वक्त निकालते हैं। बहुत छोटा सा डिफरेंस है जिसको हम कभी ना एक्सेप्ट करते हैं ना ध्यान देते हैं। इनफैक्ट हम खुद ही कह देते हैं यार बंदे के पास जब वक्त होगा बात कर लेगा। लेकिन आप जिसके लिए इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों, तो वो आपसे बात करने के लिए वक्त निकालेगा। जैसे आपकी मदर, आप उन्हें फोन कीजिए, वो कितनी भी बिजी हो वो वक्त निकाल लेंगी आपसे बात करने के लिए। लेकिन हम बच्चे कहते हैं मम्मा जब टाइम होगा तो बात करेंगे। ये बहुत छोटी सी बात है और ये हर रिश्ते में है। आप किसी भी रिश्ते को उठाकर देख लीजिए, अपने से जुड़े और देखिए कि किसके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं और किसको फ्री टाइम की जरूरत होती है आपसे बात करने की। बहुत छोटी सी लेकिन कीमती बात। और इसी बात पर अभी अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्पानी। जी हाँ, आपका अपना दिल से वाला चैनल।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
10: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
9: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
10: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
9: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
10: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
11: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर. याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
12: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.

यू नो व्हाट दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत क्रिएटिव होती जा रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव, हर रोज क्रिएटिव कैसे नहीं, मैं अपने घर को कुछ अच्छा वर्क नहीं कर रही हूँ, उस पर कुछ अच्छा क्रिएशन नहीं दिखा रही हूँ वहाँ पर। एक्चुअली मैं अपने ही लिए नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जा रही हूँ और वो क्रिएशन जो है वो मेरी प्रॉब्लम्स में नजर आने लगा है। सो यस, आई एम सो क्रिएटिव, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है। बिना मतलब के पंगे कभी कभी हम लेते हैं ना, बिना मतलब की प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ध्यान दीजिए थोड़ा अपने आप पे, जहाँ पर बदलने की कोशिश करनी हो थोड़ा सा करिए, उसमें क्रिएटिविटी दिखा दिखा के और स्मार्ट मत बनिए कि एकदम परेशानियों से आप खुद ही अपनी बनाई परेशानियों से घिर जाएं। और ये ज्यादातर परेशानी जो होती है वो दूसरों के बारे में सोचकर, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दूसरों के लिए करके, दूसरों को ना कहने की चाहत जो नहीं है आप में बिल्कुल भी, कि आप नो नहीं कह सकते, या फिर जो बाउंड्री आपको खुद के लिए सेट करनी है वो आप सेट नहीं करते। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो ना करके आप अपने ही लिए नई प्रॉब्लम्स डेली क्रिएट करते हैं। तो क्या करें, अभी उन्हीं प्रॉब्लम्स के नाम फिलहाल गाना सुन लें, आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

सो फ्रेंड्स, ये था आज सताक्षी के साथ आपका एक और बेहतरीन सा साथ इट हैपेंस में। आज एक बार फिर से इस मॉर्निंग जर्नी में आप सताक्षी के साथ थे, कुछ बेहतरीन बातों और गानों के साथ। तो मेरी और आपकी बातों का ये सिलसिला, ये सफर आगे भी जारी रहेगा। जी हाँ, कल सुबह फिर से मिल रहे हैं ना हम इसी इट हैपेंस के सफर में, हमारे अपने ब्रेकफास्ट शो में। सो चलिए, आज के सफर से आप इजाजत ले लेते हैं, विदा ले लेते हैं इस वादे के साथ कि कल फिर से मिलेंगे, क्योंकि आपको भी बहुत सारे काम है और इस दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करनी है। तो मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करते हुए कहूंगी Have a great day and yes, of course, good morning.

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

100 करोड़ तो वध दी जीएसटी धोखादेही नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच छापेमारी तो बाद कीती गई है। पंजाब दे साबका मंत्री फिलहाल हरियाणा दी जेल विच न्यायिक हिरासत विच है। जांच एजेंसी ने एक बयान विच कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकू एक्ट दे तहत ए अंतरिम हुक्म जारी किया गया है, जिस दे तहत पंजाब दे लुधियाणा हरियाणा दे गुरुग्राम अते चंडीगढ़ दे विच स्थित बैंक खाते एफडी अते जमीन व्यापारक जायदाद अते रिहायशी अपार्टमेंट कुर्क कीते गए हन। उधर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सकत्तर चंपत राय के मैंबर ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। सूत्रों मुताबिक दोवां आगुआ ने एक कदम राम मंदिर विच चढ़ावे की रकम विच हुई हेराफेरी के मामले विच एफआईआर दर्ज होने तो बाद चुकया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों से विशेष जांच टीम की मुढ़ली रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता दीआं कई गंभीर धाराओं तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले विच अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, टिंकू यादव और मनीष यादव समेत कई होरां नूं नामजद कीता गया है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ दे प्रबंधा लई प्रस्तावित नवे कानून नूं लागू करन तों पहलां सिख धिरां अते सिख विद्वानां नाल व्यापक सलाह मशवरा करन दा फैसला कीता है। इस मकसद लई सरकार इक कमेटी दा गठन करेगी जो सारे हिस्सेदारां अते सिख विद्वानां नाल विचार वटांदरा करेगी। इस फैसले की जानकारी भाजपा आगू आरपी सिंह ने नवी दिल्ली विच दित्ती। उन्होंने दस्सिया है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाल मुलाकात करके सिख भाईचारे दीआं चिंतावां नूं उन्होंने सामने रखा है। उधर पंजाब के होशियारपुर, लुधियाना, बठिंडा और अमृतसर समेत वख-वख शहरां विच पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दा समाजिक बाईकाट करन दी अपील वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। इन्हां होर्डिंगां विच 15 जून नूं श्री अकाल तख्त साहिब तों जारी उस हुक्मनामे का जिक्र किया गया है, जिस विच एक विवादित वीडियो नूं लैके मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं गुरु दोखी अते खालसा पंथ विरोधी ऐलानिया गया है। होशियारपुर विखे ए होर्डिंग कई थावां ते लगाए गए हैं। इन्हां विच होशियारपुर चंडीगढ़ रोड ते पैंदे पिंड बजरवार दे कोल गुरद्वारा हरियां वेले समेत होर भी बहुत सारियां थावां ते लगाए गए ने। उधर भगवंत सिंह मान की विवादित वीडियो के मामले में हुण राज्यसभा मैंबर स्वाति मालीवाल की गूंज पई है। कैनेडा विच बैठे जगमन समरा ने सोशल मीडिया से 4:57 की एक वीडियो सांझी की, जिस विच उसने आप जो भाजपा विच शामिल हुई राज्यसभा मैंबर स्वाति मालीवाल का जिक्र किया। मई 2024 स्वाति मालीवाल ने पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के पीए से कुटमार का इल्जाम लगाया सी ते पुलिस कोल शिकायत दर्ज करवाई सी। प्रवासी भारती जगमन समरा ने वीडियो सांझी की ते कहा कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के घर हुई कुटमार के अपमान तो रोह विच आके वीडियोज लीक कीतियां हन। समरा ने एक तरीके नाल वायरल वीडियो दे लीक होण विच मालीवाल की भूमिका दसी है। समरा ने यह भी कहा है कि स्वाति मालीवाल वालों होर वीडियोज भी भेजिया गई हन। चेते रहे कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लंघे दिनी विवादित वीडियो मामले विच जगमन समरा नूं घेरिया सी। हुण तक दे अहम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी अते सुझाव देण दे लई तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी bisoni@bisoni.com। इस दे नाल ही तुसीं साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे ज़रिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो bisoni 107.1। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तकले दे इजाज़त, सत श्री अकाल।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ
3: ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
7: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: Queensland di navi sarkar Brisbane layi vadde kaam poore kar rahi hai. Assi 50 cent de kiraye pakke taur utte lagu kar ditte han. Assi hor vi vadde doctor muhayya karwa rahe han ate Prince Charles ate Royal Brisbane varge hospitalan vich vadde sudhar lya rahe han. 1600 hor police karmi ate hor sakht kanoon lya rahe han. ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ।
8: ਹਨੀ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
9: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
8: ऐसा क्या खास है वहाँ?
9: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
8: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
9: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

कम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश शौलक दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो गल एदा हैगी है कि पिछले कुछ साल ऑडियंस के विचकार साइकोलॉजिकल फिल्मों का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है गल सही कि नहीं तुसी जरूर दसो तुहानू साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज चंगीआं लगदीआं ने क्रेज वध्या है या नहीं वध्या मैनू जरूर दसो मैसेज करके। बाकी दृश्यम या अंधाधुन की जो गल करिए इस तरह दिल्मा ने तो इस क्रेज नर ज्यादा वधाता है। जेकर तुसी भी अजिहा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है हो तो मैं थोनू कुछ अजिहा बॉलीवुड मूवीज बारे दसूंगी ना जिन्होंने तुम जो देखोगे ना तो कहोगे कि वाह ये तो बहुत ज्यादा वधिया ने क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मा ना सिर्फ तुहानू एंटरटेन करनगियां वाली बल्कि तुहाडे दिमाग नू भी शांत नहीं रहन देणगियां। इस विच कद ट्विस्ट ते सस्पेंस आ जावे ये थानू सोचण ते मजबूर हो जाऊंगी तुसी ये सब कुछ तां दस दिया इन्हां बारे मैं थानू एक एक करके पहला सुनो एक गीत।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

जी आनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिराल से बने हुए। इस लिस्ट दे विच अगला नाम केड़ा है गया, अगला नाम अगला ता नहीं मतलब पहला ही नाम क्योंकि हले आप शुरुआत ही करने लग गया। तो पहला नाम है गया जी वश। वश वशविनी वश टू यानी कि वश लैवल टू आंदा हैगा। ये गुजराती भाषा की सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म हैगी है जिसका निर्देशन कृष्णदेव यागिन ने किया है। गुजराती के नाल नाल हिंदी विच रिलीज की गई है। ये 2023 दी ना हिट फिल्म वश दा सीक्वल है। ते वश टू कहानी 12 साल बाद शुरू हुंदी है जिथे परिवार नू फिर तो ब्लैक मैजिक ते अलौकिक शक्तियां दा सामना करना पैंदा हैगा है। ते वश टू विच जानकी बोदीवाला जो कि नैशनल अवार्ड जीत चुकी है, हितू कनोटिया ते मोनल गज्जर वर्गे कलाकार शामिल ने। फिल्म टेंशन दे नाल भरे सीन्स अते बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी दे लई खूब पॉपुलर हुई है। ऑडियंस ने अंगेजिंग अते इस बहुत ज्यादा सराया है इस ऑडियंस ने। तो इस दी एमडीबी रेटिंग है कि जेडी ओ 7.9 आई है कि है।

0: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसौनी 101.1 AM ते जी आज के संदेश अलग दिन से बने हुए हूं। जी अगली फिल्म की मैं गल कर लगी हैगी वो भी बहुत ज्यादा खास हैगी है, वो हैगी है अपार शक्ति दी। तो सोच ही पै जाओगे कि अपार शक्ति की मैं शायद स्त्री मूवी की गल करूंगी, पर स्त्री मूवी की गल बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि इस अपार शक्ति राजकुमार राव तो बिल्कुल भी नहीं है, आर माधवन ते नाल है ख्याति खंडेलवाल। थ्रिलर ड्रामा हैगी है फिल्म ते नाम है जी धोखा राउंड द कॉर्नर। 2022 रिलीज हुई सी। कुकू गुलाटी ने इस डायरेक्ट किया। थ्रिलर ड्रामा फिल्म एक शहरी कपल दी लाइफ ते आधारित है। कहानी विच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नाल जूझ रही पत्नी नूं शक हुंदा है कि पति किसी अतवादी गतिविधियां विच शामिल है, पर ट्विस्ट दे नाल नाल सच्चाई सामने आउंदी है। दोगा राउंड द कॉर्नर विच हर किरदार दे ग्रे शेड्स दिखते हैं कि नहीं। इह धोखे विश्वासघात ते रिलेशनशिप ते फोकस करती है। इस IMDb रेटिंग है कि जिहड़ी 6.2 है कि ते रिलीज दे दौरान इसने नूं सस्पेंस नाल परी बेहतरीन फिल्म दस्या गया सी।

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल से बने होए। राघव जेड़ा काफी ज्यादा ट्रेंड करते रहते हैं ना सोशल मीडिया से, तो गल फिर परिणीति की करनी तो बनती है ना। तो गल परिणीति चोपड़ा की कर लें, अगली फिल्म उन्होंने ही है, पर कल्ली आदिति की नहीं है कि इस आदिति परिणीति चोपड़ा के नाल आदिति राव हैदरी ते कृति कुल्हारी भी है। तो फिल्म का नाम है जी द गर्ल ऑन द ट्रेन। पाला हॉकिंस की प्रसिद्ध किताब से आधारित है कि यह सस्पेंस थ्रिलर की कहानी एक हॉल विच ही डिवोर्सी अते अल्कोहलिक महिला मीरा की कहानी है, जो ट्रेन विच रोज गुजरते हुए एक परफेक्ट लगन वाले कपल नूं देखती है ते उन्हां दी जिंदगी विच फैंटसी बनती है कि जल्दी वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन विच फस जाती है। निर्देशक रिभु दास गुप्ता है ने इस फिल्म विच सस्पेंस अते ट्विस्ट है ने, पर क्रिटिकल मतलब रिस्पॉन्स मिक्स हैगा इसका, तो इसकी IMDb रेटिंग 4 रही हैगी, बट वन टाइम वॉच हैगी है जरूर।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहनगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम हैगा मूवी दा, ओ ता मैनू पक्की गारंटी हैगी है कि ओ थानू जरूर ही पसंद आई होगी। तुसी सब ने उस नू बहुत ज्यादा सलाया होगा क्योंकि इस दी गवाह उस दी रेटिंग ते उस दे रिस्पांस ते उस दे रिव्यूज है कि नहीं। फिल्म तापसी पन्नू दी हैगी, नाल हर्षवर्धन राणे ते नाल विक्रांत मैसी भी हैगी। रोमांस थ्रिलर फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री ते बेस्ड है। हुण तुसी सोचो कि की नाम है, यही तो तुहाडे लई काम है। कहानी विच एक महिला ते अपने पति की हत्या का आरोप लगता है, पर फ्लैशबैक ट्विस्ट के नाल प्यार जुनून ते धोखे की कहानी होर गहरी होकर उभरती हैगी। निर्देशक विनील मैथ्यू हैगे ने, फिल्म सस्पेंस नू सरकास्टिक ह्यूमर दे नाल ब्लेंड करती हैगी। सैम डीबी रेटिंग हैगी 6.9 है। हुण तक तुहानू समझ आ गई होनी है कि मैं किस फिल्म की गल कर रही हूं। बिल्कुल सही जी, मैं कर रही हैगी हसीन दिलरुबा दी।

0: मेनू सारा कुछ मिले सोहना सब तो।
1: हाँ जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसारी वंसन वन एम ते जी आर जे संदेश चौलक दे नाल सी बने हुए। अगली जिहड़ी मैं फिल्म दा जिक्र करन वाली हैगी आ ओह है जी अनन्या पांडे दी। अनन्या पांडे ते नाल विहान सम्राट ते फिल्म दा नाम हैगा है जी कंट्रोल। इस नूं वी खूब सराहया गया विक्रमादित्य मोटवानी दे डायरेक्शन विच बनी है डिजिटल थ्रिलर फिल्म। दो इन्फ्लुएंसर कपल दी कहानी है जद बॉयफ्रेंड चीट करदा है तां कुड़ी एक AI ऐप दा इस्तेमाल करके उसके सारे ऑनलाइन ट्रेस मिटा दिंदी हैगी है पर ऐप उसकी रियल लाइफ ते कंट्रोल कर लैंदी है। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी सोशल मीडिया ते AI दे खतरे ते कमेंट्री है। IMDb रेटिंग है कि जी 6.2 है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
0: Vadere kifayati rihayish di shuruaat vadere gharan di uplabdhta naal hundi hai. इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਠੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਖੇ।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 107.1 FM ते जी आर चे संदेश चौलक दे नाल तुसी बने होए हो। देखो अगला जेड़ा मैं नाम लैण वाली है फिल्म दा वो बहुत ज्यादा वधिया हैगी ओ है आलिया भट्ट दी। आलिया भट्ट दी फिल्मां दी जदों भी गल आउंदी हैगी ना तां असीं हमेशा कहिंदे आ कि बहुत ही वधिया हुंदियां ने क्योंकि कमाल दी एक्ट्रेस आलिया भट्ट ते इह फिल्म वी आलिया भट्ट दी बा कमाल हैगी है। ये फिल्म है तो इन्हों एक्ट्रेस नाल होर भी ज्यादा कमाल दी है वो है शेफाली शाह। शेफाली शाह नो डाउट बहुत ज्यादा शानदार एक्टर है। फिल्म का नाम है डार्लिंग्स। जी हाँ डार्लिंग्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म रही हैगी बहुत ज्यादा सोहनी भी है कहानी बहुत ज्यादा वधिया हैगी है एंड तो इसका बहुत ज्यादा वधिया है। इस नाल नजर आते हैं इन्हों विजय वर्मा से। विजय वर्मा की एक्टिंग का तो हर किसी पता ही है ना कि मैं विजय वर्मा आलिया भट्ट के हसबेंड बनाए ने किरदार है किस तरह के आलिया भट्ट टॉर्चर करते हैं मौत की कगार से पहुंचाते हैं। यह सब कुछ तो देखना सारा कुछ मैं नहीं दसती तुम देखियो तो दस्यो तुम्हें कि लगी डार्लिंग्स।

0: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA. From 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane. With 32 teams already confirmed, participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imrose Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
5: जीवन से भरी तेरी आँखें।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: एल के आर इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। दिस जुलाई एक्सपीरियंस द मैजिक लाइव। उस्ताद राहत फतेह अली खान विद हिज सन शहजमान अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट परफॉर्मिंग हिज ग्रेटेस्ट बॉलीवुड एंड कव्वाली हिट्स। 23rd जुलाई 2026 एट ब्रिस्बेन सेंट्रल मेन ऑडिटोरियम। बुक योर टिकट्स नाउ एट dryTickets.com.au। Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या कहा?

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: ए विलेन।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लिए नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Samsung ki mala pe simroon mein.
3: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

0: भरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख करो सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन क्वाइन कहंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आप माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: अधूरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन रिवर फ्रंट का कायाकल्प करेगा लैंड लीज। जी हां, ब्रिस्बेन सिटी से आज सुबह की सबसे बड़ी खबर डेवलपमेंट को लेकर है। क्वींसलैंड सरकार ने मशहूर डेवलपर लैंड लीज को साउथ ब्रिस्बेन में पूर्व वीसी साइट को एक शानदार रिवर फ्रंट इलाके में बदलने के लिए चुना है। वहीं 2032 ओलंपिक से पहले तैयार होगा नया प्रोजेक्ट। इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसका पहला फेज ब्रिस्बेन में होने वाले 2032 ओलंपिक्स और पैरालंपिक खेलों से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं आज कंगारू पॉइंट ब्रिज चमकेगा हरे और सुनहरे रंग में। जी हां, आज ब्रिस्बेन का लैंडमार्क कंगारू पॉइंट ब्रिज खास तौर पर ग्रीन और गोल्ड रंग की रोशनी से जगमगाएगा। ये लाइट अप ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल टीम के सम्मान में किया जा रहा है जो आज फीफा वर्ल्ड कप में अपना अहम मैच खेल रही है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बनाम पराग्वे। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पराग्वे से हो रहा है। ब्रिस्बेन के समय के अनुसार ये मैच दोपहर 12 बजे सैन फ्रांसिस्को में शुरू हो चुका है और वर्ल्ड कप के इतिहास में ये दोनों टीमें पहली बार आमने सामने हैं। इसी के साथ साउथ ब्रिस्बेन में चोरों का आतंक, कई घरों में चोरी। ब्रिस्बेन को लोकल क्राइम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीती रात ब्रिस्बेन के साउथ और लोगन इलाके में नकाबपोश चोरों के एक गैंग ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने हीथवुड रनकॉन और मैनाली समेत कई इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। वहीं चोरी की गाड़ियों को लेकर पुलिस का अलर्ट। चोरी की इन वारदातों के दौरान अपराधियों ने एक सफेद रंग की मित्सुबिशी कार और एक स्कोडा कार भी चुरा ली। मैनली इलाके में एक 49 साल के मकान मालिक ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की जिसमें उन्हें हाथ में चोट आ गई। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले अमित शाह और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात, कार भी चुरा ली। मैनली इलाके में एक 49 साल के मकान मालिक ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की जिसमें उन्हें हाथ में चोट आ गई। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले अमित शाह और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात, आज सुबह की सबसे बड़ी भारत की

को लेकर बड़ा विवाद। राजस्थान के कोटा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 10वीं शताब्दी के पुराने मठ की 215 एकड़ की कीमती जमीन को लेकर चल रहे विवाद में एक पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके साथ मध्य प्रदेश में भूमि विवाद पर गरमाई राजनीति। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पत्नी की हिस्सेदारी वाली एक फर्म द्वारा जमीन खरीदने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी का पर्दाफाश। यूपी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक फैक्ट्री से कई बंधुआ मजदूरों को रेस्क्यू कराया है। छुड़ाए गए मजदूरों ने बताया कि उनसे रोजाना 20-20 घंटे काम कराया जाता था, सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था और विरोध करने पर रॉड से पीटा जाता था। वहीं जेएनयू ने जारी की पहली मेरिट लिस्ट। हायर एजुकेशन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आज पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ देशभर में मॉनसून की दस्तक और मौसम का हाल। मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई और चंडीगढ़ समेत देश के बड़े हिस्सों में मॉनसून की बारिश ने दस्तक दे दी है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले वेनेजुएला में भूकंप से मची तबाही। इंटरनेशनल खबरों में सबसे दुखद खबर वेनेजुएला से है। वहां आए दो बैक टू बैक विनाशकारी भूकंपों के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई। इस बीच ला गुएरा इलाके में मलबे से 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला। ग्लोबल मार्केट और सुरक्षा के लिहाज से एक चिंताजनक खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के कुछ ही दिनों बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो शिप पर ड्रोन से हमला हुआ है। इस हमले के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अचानक 2% बढ़ गई हैं। वहीं अमेरिका और खाड़ी देशों की बड़ी बैठक। बहरीन में अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद GCC के देशों के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खाड़ी देशों को भरोसा दिलाया है कि ईरान के साथ किसी भी डील में उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। वहीं यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज का असर है। स्पेन में पिछले 4 दिन के अंदर गर्मी की वजह से 212 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं फ्रांस ने भी अपने देश में हाई लेवल हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी है। इसके साथ कनाडा में प्लेन क्रैश। कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज इलाके से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां जंगलों की आग बुझाने के काम में लगा एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट समेत विमान के सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रूस के शैडो फ्लीट टैंकर को फ्रांस ने रोका। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि उनकी नेवी ने सिसिली के तट के पास एक संदिग्ध रूसी शैडो फ्लीट ऑयल टैंकर को इंटरसेप्ट करके रोक दिया है। इस कार्रवाई के बाद यूरोप और रूस के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास। स्पोर्ट्स की दुनिया से आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर। मेक्सिको में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका की टीम ने इतिहास रच दिया। उन्होंने साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर अपने देश के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में जगह बना ली है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अन्य मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप से ही कुछ और नतीजे भी आए हैं। स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराया। बोस्निया ने कतर को 3-1 से शिकस्त दी, जबकि ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से एक तरफा जीत दर्ज करके नॉकआउट राउंड का टिकट पक्का कर लिया। मोरक्को भी हैती को 4-2 से हराकर अगले दौर में पहुंच चुका है। इसके साथ इंडिया बनाम आयरलैंड T20 सीरीज आज से। क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है। भारतीय क्रिकेट टीम आज से आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 सीरीज का आगाज करने जा रही है। वहीं एनबीए में बड़ा उलटफेर, लाफेलो बॉल का ट्रेड। जी हां, बास्केटबॉल की दुनिया से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। चार्लोट हार्नेट्स ने अपने स्टार पॉइंट गार्ड लाफेलो बॉल और जोश ग्रीन को मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स के साथ ट्रेड करने का फैसला किया है।

0: इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ, ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करंज भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस, ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks Tanvire, I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji no on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896। दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
7: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।
2: ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਬਤਾ ਦੋ।
3: ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
1: ਸਟਾਰਿੰਗ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ।
4: ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆਸ਼ਕੀ।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

कम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश शौलक दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो गल एदा हैगी है कि पिछले कुछ साल ऑडियंस के विचकार साइकोलॉजिकल फिल्मों का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है गल सही कि नहीं तुसी जरूर दसो तुहानू साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज चंगीआं लगदीआं ने क्रेज वध्या है या नहीं वध्या मैनू जरूर दसो मैसेज करके। बाकी दृश्यम या अंधाधुन की जो गल करिए इस तरह दिल्मा ने तो इस क्रेज न होर ज्यादा वधाता है। तो जेकर तुसी भी अजिहा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है हो तो मैं थोनू कुछ अजिहा बॉलीवुड मूवीज बारे दसूंगी ना जिन्हों जो देखोगे ना तो कहोगे कि वाह ये तो बहुत ज्यादा वधिया ने क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मा ना सिर्फ तुहानू एंटरटेन करनगियां ऐ वालियां बल्कि तुहाडे दिमाग नू भी शांत नहीं रहन देणगियां। इस विच कद ट्विस्ट ते सस्पेंस आ जावे ये थानू सोचण ते मजबूर हो जाऊंगी तुसी ये सब कुछ तां दस दिया इन्हां बारे मैं थानू एक एक करके पहला सुनो एक गीत।

0: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम जोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम जोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी आनू जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जी आर जे संदेश अलग दिराल से बने हुए। इस लिस्ट दे विच अगला नाम केड़ा हैगा है, अगला नाम अगला ता नहीं मतलब पहला ही नाम क्योंकि हले आपां शुरुआत ही करन लग गया ता पहला नाम हैगा जी वश। वश वश विनी वश टू यानी कि वश लैवल टू आंदा हैगा। एक गुजराती भाषा की सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म हैगी है जिसका निर्देशन कृष्णदेव यागिन ने किया है। गुजराती दे नाल नाल हिंदी विच रिलीज की गई है। ये 2023 दिना हिट फिल्म वश दा सीक्वल है। वश टू कहानी 12 साल बाद शुरू हुंदी है जिथे परिवार नू फिर तो ब्लैक मैजिक ते अलौकिक शक्तियां दा सामना करना पैंदा हैगा है। ते वस्तु विच जानकी बोदीवाला जो कि नेशनल अवार्ड जीत चुकी है, हितू कनोटिया ते मोनल गज्जर वर्गे कलाकार शामिल ने। फिल्म टेंशन दे नाल भरे सीन्स अते बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी दे लई खूब पॉपुलर हुई है। ऑडियंस ने अंगेजिंग अते इस बहुत ज्यादा सराया इस ऑडियंस ने। इस दी एमडीबी रेटिंग हैगी है जिहड़ी 7.9 आई हैगी है।

जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन वाने एम ते जी आज संदेश अलग दिन से बने हुए हूं। जी अगली फिल्म की मैं गल करन लगी हैगी वो भी बहुत ज्यादा खास हैगी है, वो हैगी है अपार शक्ति दी। हूं तुसी सोच ही पै जाओगे कि अपार शक्ति दी मैं शायद स्त्री मूवी की गल करूंगी, पर स्त्री मूवी की गल बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि इस विच अपार शक्ति दे नाल राजकुमार राव तो बिल्कुल भी नहीं है, आर माधवन ते नाल है ख्याति खंडेलवाल। थ्रिलर ड्रामा हैगी है फिल्म, ते नाम है जी धोखा राउंड द कॉर्नर। 2022 रिलीज हुई सी, कुकू गुलाटी ने इसनु डायरेक्ट किया। थ्रिलर ड्रामा फिल्म एक शहरी कपल दी लाइफ ते आधारित है। कहानी विच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नाल जूझ रही पत्नी नू शक हुंदा है कि पति किसी अतवादी गतिविधियां विच शामिल है, पर ट्विस्ट दे नाल नाल सच्चाई सामने आउंदी है। दोगा राउंड द कॉर्नर विच हर किरदार दे ग्रे शेड्स दिखते हैं कि नहीं, इह धोखे विश्वासघात ते रिलेशनशिप ते फोकस करती है। इसकी IMDb रेटिंग है जिहड़ी 6.2 है, ते रिलीज दे दौरान इसने नू सस्पेंस नाल परी बेहतरीन फिल्म दस्या गया सी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए राघव चड्ढा काफी ज्यादा ट्रेंड करते रहते ने ना सोशल मीडिया ते तां गल फिर परिणीति दी करनी तां बनदी है ना तां गल परिणीति चोपड़ा दी कर लैने अगली फिल्म उन्हां दी है पर कल्ली आदिति दी नहीं है कि इस दे विच आदिति परिणीति चोपड़ा दे नाल आदिति राव हैदरी ते कृति कुल्हारी वी है ते फिल्म दा नाम है जी द गर्ल ऑन द ट्रेन पाला हॉकिंस की प्रसिद्ध किताब से आधारित है कि यह सस्पेंस थ्रिलर की कहानी एक हॉल विच ही डिवोर्सी अते अल्कोहलिक महिला मीरा की कहानी है जो ट्रेन विच रोज गुजरते हुए एक परफेक्ट लगन वाले कपल नूं देखती है ते उन्हां दी जिंदगी विच फैंटसी मुंडी है कि जल्दी वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन विच फस जाती है निर्देशक रिभु दास गुप्ता है इस दे फिल्म विच सस्पेंस अते ट्विस्ट है पर क्रिटिकल मतलब रिस्पॉन्स मिक्स है इसका तो इसलिए आईएमडीबी रेटिंग 4 रही है कि बट वन टाइम वॉच है कि है जरूर
1: एक दो गल्ला करनी से थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहनी है क्योंकि मेरी जिंदगी मैं चीजा सीखी तो थोड़ा दसनी मेरा फर्ज है

0: Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com for best service, complete legal paperwork, merit certificate and a memorable merit ceremony. Remember the name Parmanand, your professional and friendly civil merit celebrant since 2000.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम हैगा मूवी दा, वो ता मैनु पक्की गारंटी हैगी है कि वो थानू जरूर ही पसंद आई होगी। तुसी सब ने उसनु बहुत ज्यादा सलाया होगा क्योंकि इसकी गवाज दी रेटिंग ते उसके रिस्पॉन्स ते उसके रिव्यूज है कि नहीं। फिल्म तापसी पन्नू दी हैगी, नाल हर्षवर्धन राणे ते नाल विक्रांत मैसी भी हैगी। रोमांस थ्रिलर फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री ते बेस्ड है। हुण तुसी सोचो कि की नाम है, यही तो तुहाडे लई काम है। कहानी विच एक महिला ते अपने पति की हत्या का आरोप लगता है, पर फ्लैशबैक ट्विस्ट के नाल प्यार जनून ते धोखे की कहानी होर गहरी होकर उभरती हैगी। निर्देशक विनील मैथ्यू हैगे ने ते फिल्म सस्पेंस नूं सरकास्टिक ह्यूमर दे नाल ब्लेंड करती हैगी। IMDb रेटिंग हैगी 6.9 है। हुण तक तुहानूं समझ आ गई होनी है कि मैं किस फिल्म की गल कर रही हूं। बिल्कुल सही जी, मैं कर रही हैगी हसीन दिलरुबा दी।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਠ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ
3: ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
7: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
8: Queensland di navi sarkar Brisbane layi vadde kam pure kar rahi hai. Asi 50 cent de kiraye pakke taur utte lagu kar ditte han. Asi hor vi vadde doctor muhaiya karwa rahe han ate Prince Charles ate Royal Brisbane varge hospitalan vich vadde sudhar lya rahe han. 1600 hor police karmi ate hor sakht kanoon lya rahe han. ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ
9: ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
10: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
9: ऐसा क्या खास है वहाँ?
10: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
9: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
10: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
11: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
12: यार आई एम सो वरीड। Actually want an experienced lawyer to handle my case.
11: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
12: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
11: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-2ENS Family Law. Immigration laws may be. Bhardwaj and Associates ke lawyers ka vast experience hai. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
12: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
11: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235.

0: सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो रब सीगा जानू कले कले खाब तो रब सीगा जानू कले कले खाब तो नी मैनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो।
1: हाँ जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसौनी वनसन वन एम ते जी आर जे संदेश चौलक दे नाल तुसीं बने होए। अगली जिहड़ी मैं फिल्म दा जिक्र करन वाली हैगी आ ओह है जी अनन्या पांडे दी। अनन्या पांडे ते नाल विहान सम्राट ते फिल्म दा नाम हैगा जी कंट्रोल। इस नूं वी खूब सराहा गया विक्रमादित्य मोटवानी दे डायरेक्शन विच बनी ए डिजिटल थ्रिलर फिल्म। दो इन्फ्लुएंसर कपल दी कहानी है, जद बॉयफ्रेंड चीट करदा है तां कुड़ी एक AI ऐप दा इस्तेमाल करके उसके सारे ऑनलाइन ट्रेस मिटा दिंदी हैगी है, पर ऐप उसकी रियल लाइफ ते कंट्रोल कर लैंदी है। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी सोशल मीडिया ते AI दे खतरे ते कमेंट्री है। IMDb रेटिंग है कि जी 6.2 है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
5: Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
6: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
7: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
6: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
7: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
8: Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else.
9: ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਠੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 एम ते जी आर चे संदेश चलक दे नाल तुसी बने होयो। देखो अगला जेड़ा मैं नाम लैण वाली है फिल्म दा वो बहुत ज्यादा वधिया हैगी, है आलिया भट्ट दी। आलिया भट्ट दी फिल्मां दी जदों भी गल आउंदी हैगी ना तां असीं हमेशा कहिंदे आ कि बहुत ही वधिया हुंदियां ने क्योंकि कमाल दी एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ते इह फिल्म भी आलिया भट्ट दी बा कमाल हैगी है। यह फिल्म है तेनाद विच है एक्ट्रेस नाल होर भी ज्यादा कमाल दी है वो है शेफाली शाह। शेफाली शाह नो डाउट बहुत ज्यादा शानदार एक्टर है। ते फिल्म दा नाम हैगा है डार्लिंग्स। जी हाँ डार्लिंग्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म रही हैगी, बहुत ज्यादा सोहनी भी है, कहानी बहुत ज्यादा वधिया हैगी है, एंड तां इसदा बहुत ज्यादा वधिया है। ते इस दे विच नाल नजर आउंदे हैगे ने इन्हां दे विजय वर्मा। ते विजय वर्मा दी एक्टिंग दा तां हर किसे नूं पता ही है ना किवें विजय वर्मा आलिया भट्ट दे हसबैंड बनाए ने ते किरदार दे विच हैगे ने ते उह किस तरां दे नाल आलिया भट्ट नूं टॉर्चर करदे ने ते मौत दी कगार ते पहुंचांदे ने, इह सब कुछ तां देखणा, सारा कुछ मैं नहीं दसदी, तुसीं देखियो ते दस्सियो तुहानूं किद्दां दी लगी डार्लिंग्स।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विल शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

शर्त में चाहता हूं। तुम्हारे खाते में सारी दुनिया से लड़ सकता।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आप हैं इस नई सुबह आपकी सताक्षी के साथ, और आज से एक नए सफर की, आज के दिन के साथ नई शुरुआत, जीवन आधार। जी हाँ, इसी कार्यक्रम में आज से होगी आपसे मुलाकात। जीवन का आधार वो ईश्वर, परमात्मा, वाहेगुरु, ईसा मसीह, आप उसे जो भी नाम दे दे वो है, और आपके जीवन की नैया को पार लगाने वाला भी वही है। तो चलिए उस खुदा की, उस ईश्वर की, उस परम पिता परमेश्वर की, उस सच्चे बादशाह की करते हैं आज एक बार फिर से वंदना, जीवन आधार में सताक्षी के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज भगवान से है। तुम ईसा कहो वो वाहे गुरु, हम सब की अरज अल्लाह से है। कितनी सच बात है ना दोस्तों, हम सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। लेकिन आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म को मानने के पीछे है एक ही मकसद, अपनी प्रार्थना को उस शक्ति तक पहुंचाना जो हमारे हिसाब से इस संसार का निर्माण कर रही है, उसे चला रही है। और उसी शक्ति की, उसी सर्वशक्तिमान की हम प्रार्थना करते हैं हर सुबह अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग नामों से। लेकिन नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए, आपकी प्रार्थना एक ही है, उस शक्ति से है जो ये दुनिया चला रही है, और उसी शक्ति को समर्पित है यज्ञ लगाना। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जीवन आधार रेडियो ब्रह्मानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं और इस आधार में, जीवन के आधार में हम अपने ही जीवन को ढूंढने की आज इस नई सुबह एक कोशिश कर रहे हैं। आगे ये कोशिश जारी रहेगी। हमें सुनते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मानी 1701 AM।

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं जीवन आधार, और इस सफर में आज से हर रोज आपकी हम सफर सताक्षी आपका साथ निभाती रहेगी। जब तक आप उस ईश्वर को मैं के साथ जोड़ते हैं, जब तक आप में मैं जिंदा रहता है, आप कितनी भी कोशिश कर ले उस शक्ति को पा नहीं सकते, और कितना भी आप दुआ मांग लें, आप प्रार्थना कर लें, आप अरदास लगा लें, लेकिन आप अपनी आवाज उस तक पहुंचा नहीं सकते हैं। उसकी आवाज सुनने का और अपनी आवाज उस तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, अपने मैं को मिटा देना। तो मिटा दीजिए अपने मैं को और ढूंढ लीजिए उस सर्वशक्तिमान को। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एम पर जीवन का आधार जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ और हम इस जीवन आधार के माध्यम से जीवन के ही सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए गुरुवाणी के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर हमारे साथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत अजुनी सभम गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोचे ना होवे जो सोची लाख बार छुपे छुप ना होवे यानी एक ही ईश्वर है और उसी का नाम सच है वही सबको बनाने वाला है उसकी कोई मूरत नहीं है वो किसी का दुश्मन नहीं है जन्म मरण से दूर है और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है ऐसे ही परमात्मा को गुरु नानक जी ने अकाल पुरख कहा है जिसकी शरण में गुरु के बिना जाना संभव नहीं है आइए उसी ईश्वर को नमन करते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

तो श्रोताओं, ये था आज हमारा आपका आज की सुबह साथ। कल इसी साथ को लेकर आगे भी साथ साथ चलेंगे। और अपना जो रिश्ता है वो ईश्वर से जोड़े रखिए, उस शक्ति को जिसमें भी आप जिस भी नाम से माने विश्वास करते रहिए, क्योंकि वही है जिसने आपको थामा है, आपके अपनों को थामा है। नमस्कार।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चनजन और आप सभी का इस खूबसूरत सुबह में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपकी चाय की प्याली तैयार है और हम अगले एक घंटे तक लेकर आए हैं देश और दुनिया की खास खबरें, बॉलीवुड की बातें और आज के इतिहास के पन्ने, हेल्थ टिप्स भी है और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बेहतरीन पॉजिटिव वाइब्स। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे और आप सभी का ये जो प्रोग्राम है जानने का सफर, ये सफर बहुत ही बेहतरीन गुजरे, क्योंकि आज मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ बहुत सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन। उससे पहले आइए सुनते हैं यह गीत, अपनी मॉर्निंग को बनाते हैं और बे एनर्जेटिक। इस गीत के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

0: एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रेस वाणी। तो आइए सबसे पहले इंडिया की कुछ खबरें जान लेते हैं। भारत में 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल बिक्री से जुड़े कुछ रेगुलेटरी बदलाव लागू होने जा रहे हैं और वहीं पर सीबीएसई ने क्लासेस 6 से 10th के लैंग्वेज पॉलिसी में कुछ नए अपडेट्स जारी किए हैं। तो इंडिया में मॉनसून कई राज्यों में एक्टिव है, लोगों को हैवी रेनफॉल के दौरान जो है जरूरी सावधानी रखने की सलाह भी दी जा रही है। वहीं पर इंटरनेशनल बात करें तो विम्बलेडन 2026 का शानदार आगाज हो चुका है और दुनिया भर की टेनिस फैंस की नजरें जो है वो टूर्नामेंट पर टिकी हुई है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत।
1: अरे अरे ए, ए,

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और कुछ ऑस्ट्रेलिया की खबरों को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पर चर्चा जारी है। वहीं पर फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स नए हाउसिंग इनिशिएटिव्स पर काम कर रही है। वहीं पर क्वींसलैंड में स्कूल हॉलीडेज के दौरान टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर अच्छी भीड़ देखने को भी मिल रही है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं अपने दोस्त चांदनी के साथ रेडियो विश्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। तो यहाँ पर जहाँ इतनी खबरों की बातें हो गई है, तो बॉलीवुड बस तो बनता ही है। जी हाँ, चलिए आप सभी के लिए बहुत सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी खबरें हैं। वो ये है कि शाहरुख खान की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट बरकरार है। वहीं पर अगर हम सलमान खान और आमिर खान की बात करें, तो सलमान खान और आमिर खान भी अपनी नई फिल्म्स की वजह से हेडलाइंस में बने हुए हैं। वहीं पर पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स आज भी हर जनरेशन के फेवरेट बने हुए हैं। जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों दिन की शुरुआत, अपनी प्यारी प्यारी मॉर्निंग की शुरुआत एक ग्लास पानी के साथ करे। हमेशा एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। मैं हमेशा आपको हर प्रोग्राम में बोलती हूँ, कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक जरूर करें, सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, मोबाइल स्क्रीन से बीच बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। जी हाँ, तभी तो आप अपने दोस्त आरजे जॉनी जैन को सुन पाएंगे और बहुत सारे अपडेट्स पाएंगे। आप सभी जुड़े रहिए रेडियो ब्रिस्वानी में। आइए इसके साथ सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत, ताकि आप सभी का मूड ना हमेशा फ्रेश रहे। जी हाँ, सुनिए ये गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

0: सुनो आज, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी है।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। देखिए, जहाँ पर इतनी बातें होती हैं, वहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना भी जरूरी है। जैसे मैंने आप सभी से पहले शेयर किया था कि हनी यानी कि जो शहद है वो कभी भी खराब नहीं होता, वैसे ही पहले एक और बात की थी जो ऑक्टोपस है उनके 3 दिल होते हैं और हम लोग है जो एक भी संभाला नहीं जाता है ना। पता नहीं ऑक्टोपस 3 दिल कैसे संभालते होंगे। वहीं पर अगर हम बैम्बू की बात करें तो बैम्बू जो होता है यानी बैम्बू ट्री भी होता है, आप सभी ने सुना है और देखा भी होगा। बैम्बू जो है वो एक दिन में लगभग 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। जी हाँ, वहीं पर अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आप जानते हैं क्या ह्यूमन बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी होती है? तो मैं आप सभी से शेयर करती हूँ, ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो जॉ मसल मानी जाती है। जी हाँ, जो हमारी जॉ मसल होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। जी हाँ, तो आइए इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी। सुनते रहिए और बने रहिए अपनी दोस्त आरजे चांदनी जैन के साथ।

हाँ जी दोस्तों, जहाँ पर हम फैमिली की बात करते हैं, पुराने टाइम पर, पहले टाइम पे, 90s के टाइम पर, हर वक्त फैमिली को वक्त दिया किया करते थे हम। हमेशा देखते थे इंडोर गेम्स इतनी होती थी, आउटडोर गेम्स इतनी होती थी, हम अपनी फैमिली के साथ इधर जाते थे, घर में खेलते थे, यानी कि उस टाइम मोबाइल का जमाना ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, क्या वो चीज हम अब नहीं ला सकते? क्या हम रोज सिर्फ 30 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रही, सिर्फ 30 मिनट बिना मोबाइल के अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं? हाँ या ना, जरूर मैसेज करके बताएं। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक छोटी सी बातचीत भी रिश्तों को और मजबूत बना सकती है। साथ खाना खा के बैठकर बहुत सारी बातचीत करना। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा 12 घंटे में से अपने 10 घंटे फैमिली को दीजिए, लेकिन 30 मिनट्स, अगर 30 मिनट हम रोज के देना, तो आप सच में देखना रिश्तों में कितनी मिठास, जितनी भी गलतफहमी थी वो पूरी दूर हो जाती है और हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जी हाँ, इसीलिए फैमिली को भी वक्त देना उतना ही जरूरी है जितने सारे काम जरूरी है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रेसवानी।

0: आप सब सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा क्विज टाइम हो जाए। जी हाँ, वैसे मैं आप सभी से बहुत सारे सवाल पूछती हूँ और उसका एंड में यानी कि शो के एंड होने से पहले उसका आंसर भी दे देती हूँ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे आप सभी को पता ही होगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा। तो इनमें से क्या आंसर है फटाफट से आप अपने मैसेज जो है करके मुझे जरूर भेजें ताकि मैं एंड में देखूं कि कितने लोगों ने जो है सही जवाब दिया है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। इन दो क्वेश्चन के आंसर आप जरूर दीजिए। तब तक आप सुनिए ये गीत और करते हैं हम इंतजार कि कौन सा जो ओशन है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। फटाफट बताइए और आइए सुनते हैं ये गीत ऑनली ऑन रेडियो बिस्वानी।
1: बागों में बाहर है,
2: है?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है,
2: है?
1: गर्मियों की निहार है?
2: है
1: तो तुमको मुझसे प्यार है।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रिसवानी में। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? वैसे मैंने सोचा जहाँ इतनी बातें होगी थोड़ी सी मोटिवेशन और बन जाता। जी हाँ, वैसे तो प्रोग्राम मोटिवेट हो ही जाते हैं हम प्रोग्राम सुनकर, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है और हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करके सीखना जरूरी है। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का मॉर्निंग शो जो है यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले मैंने दो क्वेश्चन आप सभी से पूछे थे। सबसे पहला, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, और दूसरा था दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। जी हाँ, राइट है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, और दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। तो थैंक यू जिन जिन लोगों ने आप सही जवाब दिया है, उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है मैं आप सभी से पूछती रहूंगी, और ये क्वेश्चंस जो है ना हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का कार्यक्रम यानी कि मॉर्निंग शो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, और रेडियो ब्रिसवानी सुनते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी। तो आइए इसके साथ समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम को, इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

नमस्कार, मैं सदाक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम। आइए सुनते हैं हफ्ते की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, 36 नागरिकों की मौत, सीमा पर बढ़ा तनाव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमावर्ती इलाकों में की गई जमीनी और हवाई हमलों की कार्यवाही में कम से कम 36 अफगान नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 163 लोग घायल हुए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का दावा है कि उसने इन अभियानों में 29 चरमपंथियों को मार गिराया है। ये सैन्य कार्यवाही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान और कराची पर हुए हालिया हमलों के जवाब में की गई है। सड़कें पिंगली, टेढ़ी हो गई पटरियां, फ्रांस से जर्मनी तक भीषण गर्मी ने मचाया हाहाकार। यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। अब इस चपेट में यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया है। पूरे महाद्वीप में रिकॉर्ड तोड़ तापमान के कारण सड़कें पिघल रही हैं, ट्राम की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बाधित हो रहा है। इस भीषण मौसम ने हाईवे को भी नुकसान पहुंचाया है। ट्रेनों में देरी हुई है, पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ा है और अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया है। फ्रांस में भीषण गर्मी के बीच आया तूफान एफिल टावर पर गिरी बिजली। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पिछले कई दिनों से जारी रिकॉर्ड तोड़ और जानलेवा गर्मी के बाद भयानक तूफान आया। इस दौरान पेरिस स्थित 330 मीटर ऊंची एफिल टावर पर आकाशीय बिजली गिरी। ये घटना लाइव कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भारत सौंपेगा सबूत। भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आगामी बैठक में पाकिस्तान पर आतंकवाद को संरक्षण देने के आरोपों को लेकर दबाव बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में खुलेआम शामिल होने के वीडियो और अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। इन्हें FATF के समक्ष पेश कर पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करने की मांग की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम। देसी गगन की मदद से भारत में पहली बार सैटेलाइट गाइडेड जेट की होगी लैंडिंग। सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर DGCA ने भारत में पहली बार जेट इंजन वाले विमान पर सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके लैंडिंग करवाई। रेगुलेटर ने उदयपुर में इंडिगो के एयरबेस A320 विमान की उड़ान के लिए इसरो की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम गगन का इस्तेमाल किया। ट्राबोप्रॉप ATR विमान द्वारा ऐसा करने के कुछ साल बाद अब जेट इंजन वाले विमान भी इस तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं। आयतुल्ला खेमनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे भारत के विदेश राज्य मंत्री और बिहार के राज्यपाल। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत शामिल होगा। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आयतुल्ला अली खेमनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा करेंगे। ईरानी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खामनेई के अंतिम संस्कार और दफन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद भारत ने इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला किया है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जी हाँ सर, दोस्तों कुछ ऐसा सवाल खड़ा कर दिया मैं सुबह सुबह, लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, जयेश भाई ये कह दिया वो कह दिया, कभी आप कहते हो कि डोंट बिलीव इन रीइंकार्नेशन एंड दिस एंड दैट। देखिए दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ ना, हमेशा सोचो सोचो सोचो क्या हो रहा है। एंड आई सेट डाउन एंड थॉट अबाउट दैट वन डे, एंड यू नो व्हाट, यस यू डोंट नो व्हाट यू डिड इन प्रीवियस लाइफ, सो बट यू प्रॉब्ली नो दैट इफ आई डू दिस थिंग इट इज रॉन्ग, इफ आई डू दिस थिंग इट इज राइट। ठीक है, हो सकता है कि नहीं, तो दैट इज प्रॉब्ली कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंस दैट यू नो दैट। अभी और भी बहुत जानना है, शायद इसी के कारण फिर से आना पड़ेगा,
1: आना
0: पड़ेगा दो बार। वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, ओके, डोंट थिंक आई एम एन एथिस्ट, आई इवन डोंट ब्लेम एथिस्ट, दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज अपना कर्म आप ठीक रखो,
1: आई थिंक दैट्स अ बॉटम लाइन, सिंपल।
0: किसी स्वामी ने कहा था, मैं सुन रहा था, आप बोलेंगे कि आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, बड़ा सुंदर सा स्वामी है, केली केली बार, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा। तो एक लड़की ने उससे पूछा कि बहुत she was very impressive girl, so she knew her stuff, and she asked, अगर हम previous life के बारे में बात करते हैं, reincarnation के बारे में, तो हम अपना deed अब यहाँ कब करेंगे ना, like you know, और कौन क्या पता है क्या हो रहा है। तो he gave an answer, he says, you don't know, you won't know, because the Lord knows, but you are asking me a question, ये भी एक कर्म है याद रखना, लेकिन आप अच्छे अच्छे कर्म करो, सोचो, तो आपको बस उतना ही करना है, ठीक है, एंड लीव द रेस्ट ऑन द लॉर्ड, दैट्स व्हाट ही सेड। सो मेरे ख्याल से ये जो प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस है, मे बी दैट व्हाट इज टेलिंग अस हाउ टू लिव नाउ, ओके, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट आई सपोज, बट एनीवे आई हैव जस्ट क्लेरिफाइड माय सेल्फ, लुक, आपका इंडिविजुअल थॉट है, इंडिविजुअल ख्याल है, और आपको आगे भी बढ़ना है कि नहीं, डोंट लेट एनीथिंग पुल यू डाउन, एडवांस करिए, साइंस भी है, सब कुछ है, लेकिन इफ यू लुक एट आवर वेरी अर्ली, आई मीन द वेदर्स एंड प्रीचिंग्स एंड ऑल दैट, इट इज वेरी साइंटिफिकली, यस यू सेड दैट, एंड इट इज साइंटिफिकली रिलेटेड, लॉट ऑफ थिंग्स आर साइंटिफिकली यू नो
1: बैक्ड बाय साइंस
0: या so anyway, there is a group that it's a religious group but based on science, they also
1: not Scientology thing.
0: No, the Indian group.
1: Okay,
0: I forget what it is. Anyway, seem to be forgetting few things. Okay, chalo aage badhte hain, aaj ka dusra geet kaun sa hai?
1: I haven't played this before.
0: Okay,
1: but I've heard it many times. It's a couple years old.
0: All right.
1: And I thought, let me play it for... I don't know why I felt like playing this song.
0: All right.

0: नाइस सॉन्ग, लेकिन ना चीनी का डर ना किसी चीज का डर. अगर डरता रहूंगा तो फिर ये डर से मैं चला जाऊंगा.
1: जो डरता है
0: वो मरता, जो डर गया वो मर गया.
1: हाँ.
0: तो बट लेकिन अगर आप यंग हो तो अभी आपको बहुत आगे जाना है दोस्त, तो आप थोड़ा संभाल करें. शुगर का, शुगर बहुत अच्छा चीज नहीं है दोस्तों. ओके, इट्स नॉट रियली, रियली इट्स नॉट वेरी गुड.
1: The refined,
0: and then it will give you a low, and then आपको diabetes हो सकता है, the cancer cells love sugar, so you know just cut it out.
1: Mm.
0: Yeah. Okay. What else we got?
1: Oh, it's birthday time. What do you mean? What else we've got?
0: Okay, okay.
1: So today is the 30th of June. Happy birthday if you're celebrating your birthday.
0: It's end of the month, isn't it?
1: I know, and a financial year too. Happy birthday if you're celebrating your birthday, and a happy anniversary. We want to wish you an absolutely beautiful, beautiful day. Now, what song? I'll play the song here.

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

0: क्या किया, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन किसी ने मेरे पास लिख कर भेजा है, तुम बार टीम जैसे हो जाए करा भाई, दैट्स व्हाई टू मच फ्रूट। व्हाट डिड बार टीम डू? ओ माय गॉड, बार टीम हो जाए किया आपने क्या? Oh, this used to be a big thing, you know.
1: Is it?
0: Whenever the ball won't go in the goal,
1: yeah.
0: पीछे कुछ बांध दिए जरा, जरा जा खोद के देखो कोई जगह बंधा है कुछ।
1: It's funny how people think.
0: हाँ, बॉल आए के लौट के अपने चला जाए कैसे हो सके? कुछ जना है करल धरल काम हुए वहाँ पे भी कुछ। Oh my God!
1: What they say, दाल में कुछ काला
0: है। हाँ, दाल में कुछ काला है जरूर। Okay, चलो दोस्तों, और आपका कोई रिक्वेस्ट तो भेजिए, प्लीज कम ऑन, सेंड मी सम ऑफ योर रिक्वेस्ट इफ यू वांट। कोई अच्छा गाना रिक्वेस्ट करो ताकि हम भी सुन सकें। Okay?

0: the Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA. From 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane. With 32 teams already confirmed, participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family. Live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar. Connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
1: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
3: वधेरे किफायती रिहायश दी शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
6: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
8: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
7: अरे वाह, इनका पता बताना।
8: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
9: Okay, we are back. और इस समय 8:09 हो गए हैं दोस्तों, और हमारा साथ रहेगा 9 बजे तक। और भूलना मत, फिर बाद में सताक्षी के साथ आप हो जाएंगे, ठीक है?
10: Yes.

0: खुदा के सामने क्या छुपा हो गया दोस्तों, कुछ नहीं छुपा सकते हैं, है कि नहीं? तो हमेशा तो साथ में रहता है। यही तो एक उलझन है, यही तो एक डर है कि हम कुछ कर नहीं पाते। He's always watching on us, and the black box inside is recording everything. Oh my goodness.
1: You will never escape.
0: That's all right. It's okay. और बहुत प्यारा, इनकी जो प्यारी आवाज और इस कवाली जो है बहुत बहुत अच्छी लगी। और उम्मीद है आपको भी इतना अच्छा होगा आपके ऊपर। You can keep on listening, isn't it?
1: Yeah.
0: It's one of those things you just non-stop. You can keep listening. It's such a beautiful, beautifully done. और इस समय ठीक 8:30 बज गया है दोस्तों, और आधा घंटा और। You have to put up with us. Do not touch the dial.
1: Do not.
0: Or the button.
1: Don't you dare.

और कुछ ऐसा मूड बना हुआ है दोस्तों कि अभी हमने सुना था एक कवाली की तरह, जो इसी से इंस्पायर हुआ हूँ मैं। एक कवाली है, सुफियाना कवाली, और शायद आपको भी अच्छा लगे, बड़ा मीनिंगफुल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और टेल मी हाउ यू लाइक इट।

अरे मुसाफिर अगर ऊंचा बनना है तो पहले झुकना सीख, मिट्टी को देख हर कदम उस पर पड़ता है मगर वो शिकायत नहीं करती, वो अमीर और फकीर में फर्क नहीं करती, अपने सीने पर सबको जगा।

0: Wow, that was a beautiful song. Uh-huh. I know I chose it, but I really like that song.
1: No, it was
0: For
1: a
0: our
1: nice
0: journey.
1: Song. Yeah, nice song.
0: Beautiful song. Uh-huh. Well, we come to the end of our morning program.
1: Yeah.
0: And
1: very quickly.
0: Look at it. 8:54 already.
1: Yeah, can you believe that?
0: How did the time go?
1: I just gave the time. It was 16 minutes or something.
0: Oh, yeah, you're right.
1: Yeah. Oh, well.
0: Wow. Time flies when you're having fun. That's all I can say.
1: That's right. Yeah.
0: And with that, we're going to say our goodbyes, our namastes. Do you have anything you want to say before we say goodbye? You look like you want to say something.
1: My kabo-luab.
0: You had more than enough to say, did you?
1: I spoke a lot today.
0: Too much.
1: कहते हैं कि हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं जब तक हौसला जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है ठीक है दोस्तों तो याद रखिए हैव अ वंडरफुल डे और कीप स्माइलिंग एंड रिमेंबर ठीक है बी द रीजन समवन फील्स अ लिटिल मोर होपफुल टुडे ओके
0: एंड गिव समवन अ रीजन टू स्माइल
1: यस Okay. तो कल मिलेंगे दोस्तों
0: जी हैव अ ब्यूटीफुल डे
1: अगर आप चाहेंगे
0: तो
1: अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आएंगे
0: ओह ओके या नमस्ते या दैट्स अ गुड आइडिया इफ दे वांट अस वी विल कम ओवर
1: या ओके ऑलराइट
0: नमस्ते

0: नशे से चढ़ गई।
1: कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा बोले। जी हाँ, कलियों के घूंघट खुल गए हैं। और देखिए, सिर्फ कलियों ने घूंघट नहीं खोले हैं, भंवरे नहीं बोल रहे हैं भाई, एक नई सुबह दस्तक दे चुकी है हम सबके जिंदगी में। जी हाँ, और ये नई सुबह, ये नया आगाज है आपके सपनों का, आपके अरमानों का, और आपके बीते दिन के जो फेलियर्स थे उन्हें भुलाने का, क्योंकि आज आगाज है नया। और अंदाज भी बिल्कुल नया रखिए, अपने आप को सजाइए, संवारिए और बेहतर बनाइए, और बताइए दुनिया को कि आप बहुत स्पेशल हैं, और जो कल नहीं हुआ वो आज जरूर हो सकता है। तो चलिए इसी बात पर शुरुआत करते हैं इट हैपेंस की रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर, और आगे बढ़ते हैं अगले ट्रैक के साथ।

एटेपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर दोस्तों, आपके साथ साक्षी है और गुड मॉर्निंग कहूंगी एक बार फिर से आपको भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ उनके लिए भी दिन बहुत ही खास है जिनके लिए आज का दिन स्पेशल है। जी हाँ, जन्मदिन जिनका है भाई, आज बर्थडे बेबीज हैं, आज के दिन उनका बर्थडे है और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हम विश करेंगे, तो भाई हम कैसे ना विश करें। तो भाई जो भी आज इस दिन के हकदार हैं यानी जिनका जन्मदिन है, उन सबको जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। खिलते रहें आप, मुस्कुराते रहें आप, गुनगुनाते रहें आप और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें आप। जी हाँ, किसी भी मोड़ पर जिंदगी के थकिएगा नहीं, हारिएगा नहीं, मुस्कुराते मुस्कुराते जिंदगी के हर फेस को पार करते रहिए। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और ये दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो और ये दिन ना सिर्फ आज बल्कि पूरी उम्र आप यूं ही सेलिब्रेट कर पाएं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए आप जिंदगी के सफर को एंजॉय कर पाएं। इसी विश के साथ विश करूंगी उन्हें भी जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आइए एंजॉय करते हैं मिलकर यग्रा ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Samsung ki mala pe sim room hai.
3: LKR Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026 this July.

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सुधाक्षी के साथ रीजियो प्रस्थानी 1701 एम पर। आपने डिज्नी लैंड के बारे में सुना है, डिज्नी वर्ल्ड। हाँ, उसे बनाने वाले डिज्नी वर्ल्ड एक्चुअली जब वो बन रहा था या जब बनकर तैयार हुआ तो वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो ही दुनिया छोड़ गए थे। जब उसका इनॉग्रेशन था तो एक रिपोर्टर ने उनके भाई से पूछा कि आपको तो बड़ा दुख होगा कि आज आपके भाई जिन्होंने ये सब कुछ बनाया इसके इनॉग्रेशन को देखने के लिए वो यहाँ इस दुनिया में नहीं है, वो देख ही नहीं पाए कि कितना खूबसूरत है। तो उनके भाई ने तुरंत उस रिपोर्टर को रोका और कहा कि आप गलत सोच रहे हैं, अगर मेरे भाई ने ये सब कुछ देखा नहीं होता तो ये बना ही नहीं होता। अपनी लाइफ को इमेजिन करना, उसे देखना, उसे विजुअलाइज करना, ये होता है आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें कैसे मैनिफेस्ट होंगी इस बारे में सोच पाना। तो अपनी लाइफ को अगर आप एक विजुअलाइजेशन के थ्रू इमेजिन कर सकते हैं तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। वो चीजें भले ही लाइफ में कभी कोई सोच ना पा रहा हो, कभी किसी ने देखी ना हो, लेकिन फिर भी वो चीजें हो सकती हैं और डिज्नी वर्ल्ड इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो चलिए फिलहाल आपको आगे लेकर चलते हैं, आपके सपनों और विजुलाइजेशन के नाम सुनते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्थानी आपके साथ सताक्षी है।

किसी ने मुझसे पूछा कि सताक्षी तुम मॉर्निंग शोज करती हो तो ये बताओ, तुमसे ज्यादा बेटर तो कोई और बता नहीं सकता, जब वेट इंक्रीज हो यानी वजन बढ़े तो क्या करें। अब देखिए मैं जानते ना आप, हाँ, कि भाई बात को सीधे तरीके से नहीं कहती, हर बात को बहुत ज्यादा डीपली सोचती हूँ फिर उस पर बात करती हूँ। तो मैंने कहा कि देखो भाई, अगर बॉडी का वजन बढ़ रहा है, बॉडी का वेट इंक्रीज हो रहा है तो एक्सरसाइज करो, अगर मन का वेट इंक्रीज हो रहा है तो भाई ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और भाई अगर अच्छा कमा रहे हो और वजन जो है वो धन का बढ़ रहा है तो दान करो, लोगों को दे दो, जिन्हें जरूरत है उन्हें जितनी हेल्प कर सकते हो करो। इस तरह से मन की शांति भी मिलेगी, बॉडी का वेट भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा और खुशी जो है वो चेहरे पर बनी रहेगी, एक अजीब सी चमक आएगी। जब आप किसी की मदद बिना किसी लालच के करते हैं, आपके अंदर कोई ग्रीड नहीं होती कि यार इससे मुझे ये फायदा होगा, वहां पर जो हेल्प है वो आपके चेहरे पर नजर आती है। तो बस वो सोशल मीडिया, आजकल तो सबसे भाई सबसे ज्यादा लोगों को लालच क्या है, सोशल मीडिया पे पिक्स अपलोड करने का, है ना। हाँ, तो वो पिक्स जो है वो जरा सोच समझ के अपलोड की जाए, है ना। हाँ, कि किसी तरह का प्रमोशन ना हो जब आप किसी की हेल्प कर, बस ये ध्यान रखिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, एंजॉय कीजिए एनएसटी ट्यून रेडियो ब्रसवानी।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। यू नो लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब आपके लिए खड़े होते हैं या जब आपके किसी सक्सेस पर, छोटी सी सक्सेस पर भी तालियां बजाते हैं, तो ऐसा फील होता है कि ये पूरी दुनिया आपके लिए क्लैप कर रही है, ताली बजा रही है। जब आप जीतते हैं तब तो दुनिया नाश करती है, दुनिया आपको कहती है कि यार मुझे तुम पे प्राउड है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये आपकी कोशिश पे प्राउड फील करते हैं। आप जब गैर मौजूद हो तब ये आपके लिए लड़ते हैं, दिखावे के लिए नहीं। ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि हर बात पर आपकी बटरिंग नहीं करते, आपको बताते हैं कि आप कहां पर गलत हैं और आपको सही रास्ते पर लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो भाई अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है तो उसे इस मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जरूर विश कीजिए और उसे जरूर बताइए कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। इंजॉय कीजिए और यूं ही बने रहिए मेरे साथ आपके ब्रेकफास्ट शो में।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। यू नो, जरूरत का सामान जब आप खरीदते हैं तो जरूरत के सामान से इंसान घर भरता है ना। हाँ, कि जरूरत है जिस चीज की उसे हम घर में ले आए। लेकिन बेकार की चीजें जब आप खरीदते हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं होती, तो उनसे आप मन भरते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और लॉजिकल बात है, सोचिए। और आगे ये कहना है कि देखिए कि थोड़ी सी आजादी दीजिए अपने आप को। कभी कोई बुक, कभी कोई प्लांट, कभी कोई पोस्टर, यूं ही खरीद लीजिए बिना जरूरत के। क्योंकि पता है, जरूरतों से हम जिंदगी बनाते हैं, लेकिन ये बेकार की जो चीजें हैं ना, उनसे जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। तो इसलिए कभी जरूरतों से हट के भी जिस चीज पर मन आ जाए, जिस चीज का ख्याल आ जाए, उसे भी ले आइए। सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी 1701 एफएम पर।